करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: 7998 7877 सोफा स्टूडियो .ca। थैंक यू जी।
1: शादी दी मूवी बनवाउन ले या रिंग सेरेमनी ले, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले। याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
2: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
1: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
2: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: वड्डे वीरे चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई किथे जावां?
4: ता फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा। 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
1: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
2: 416-717-2929
1: 416-717-2929। क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।

0: करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोणिया।

चूसा खूबसूरत लोग खूबसूरत पुलकन सी चलो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो उत्तर सामने तुम बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि एम 530 डाल सुन रहे हो इस समय अगर ओंटेरियो दे विच सार्निया दे बॉर्डर तो लैके लंडन किचनर वाटलो कैम्ब्रिज ब्रेंटफर्ड होंदे हुए हैमिल्टन ते नैगरा फॉल दे बॉर्डर तक इधर 401 दे उत्ते तुसी सानू वुडस्टॉक तो लैके लंडन किचनर वाटलो कैम्ब्रिज होंदे हुए गोल्फ और मिल्टन ओंटेरियो जिथे सुन रहे हो उत्थे GTA इंटायर दे विच ते ईस्ट दे विच सानू तुसी जो ओशवा कर्टिस बोमनवेल हैम्पटन क्रॉस करदे हुए न्यू टनविल तो लैके न्यू कैसल आ जांदा अगे एक शहर ते उस तो बाद तुसी जो सानू न्यूटनविल तो बाद बेलवल तक सुनते हैं कोबर क्रॉस कर जाने तो ईस्ट दे विच सानू तुसी नॉर्थ दे विच हाईवे 7 है टूवर्ड्स ऑटोवा जाने हो लिंजी पीटरब्रो क्रॉस कर जाने हो बड़ा सोहना जिहड़ा हैगा चैनल सुन सुन रहा हुंदा ते नॉर्थ दे विच तुसी सानू 400 सीरीज इंटायर जिहड़ा हैगा इहनू कवर करदे हां असीं जाने ओरेलिया तक ते दूसरे पासे ग्रेवनहस दे उत्ते सी 11 हाईवे दे उपर ते सानू तुसी नॉर्थ विच टोबरमरी तक सुन लो यानी कि तकरीबन 1000 किलोमीटर दे रेडियस ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ विच सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा कवरेज एरिया डिजिटल फ्रीकुएंसी राही एम 530 30 ईयर प्लस समा हो गया साउथ एशियन लोगों नू सर्व करदे हन आगाज़ उस हमेशा इस अपने शो दा उस परम पुरख परमेश्वर दे नाम उटासना जिस दे नाम उटासना आगाज़ दुनिया दी हर एक शायद उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरपौ निर्वैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखाएगी तुसी चलते रहोगे ते अज दे शो दे विच जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो ले ली तुहाड़ी टिकट टू कॉल इन स्टूडियो 905-600-7333 905-673-3337 ते तुसी सानू कॉल कर रहे हो 905-673-3337 ते तुसी साडे नाल गलबात कर रहे हो

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu aane ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh yaar, ye to old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mil diye. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: Oho, ye ta proper professional meeting ho gayi.
0: Nazara restaurant, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy. Hune call karo 905-451-2600. 905-451-2600.
2: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
3: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
4: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
5: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।
6: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो रेडियो आवाज द वॉइस जिंदाबाद जिंदाबाद। फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लभ रहे हो फिर फेयर डील रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकड़ लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000 905-671-2000
2: घर नू घर बनाउंदा है कंफर्टेबल फर्नीचर ते जदों फर्नीचर दी गल आउंदी है ते फिर याद आउंदे ने कासा फर्नीचर वाले जो है सब तो पुरानी ते भरोसेमंद फर्नीचर दी दुकान जी हां इत्थे तुहानू मिलदा है कस्टम सोफा लेदर सोफा सोफे डबल बेड मैट्रेस ते पूरे घर दा सारा फर्नीचर ओ भी वाजिब रेटां ते सो अज ही पहुंचो कासा फर्नीचर 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन इना दी एक और लोकेशन है सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन ज्यादा जानकारी लिए कॉल करो परंजीत होरानू 905-803-8056 905-803-8056
3: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट को सीज या फ्रीज कर सकते हैं तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAF
4: 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca सम कंडीशंस अप्लाई
5: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 9592200200 9592200 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ
6: ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਧਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ
5: ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-671-2000 905-671-2000 ਕੁਰਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस।
1: ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं। लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकते हो।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
2: सर्विंग फ्रॉम

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 905-456-9900
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 5.

मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे जा ना चाहे कोई जरूरी तो नहीं, ये कुछ सामने हो मेरी आंखों के, वो सामने हो मेरी आंखों के, जरूरी तो नहीं, कम है कि बसा है मेरी सांसों में बस।

0: सदा है तुम,
1: क्या था?
0: तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तुम, मेरी पहली और आखिरी वफा है तुम। चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है।

0: नहीं आया अभी, नहीं आया कैसे तुम्हारी गल, कमाल हो गई, वेरी सैड। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। जिसको देख कर दुनिया को रश्क आए, जिसको देख के दुनिया को रश्क आए, तेरे प्यार करने की मेरी जान, सिंह हरजीत ने क्या मांगी है अगे तुम समझ गए होने, मैंने लगे दसन की लोड़ नहीं, बिकॉज यू आर लिसनिंग पंजाबी वर्सा। लो जी एक कॉल आई है, देखते हैं अभी पता लग जाओ किसान। हेलो
1: हेलो, कैसे हो?
0: ठीक है सर, तुम सुनाओ।
1: लव
0: लिया बापरा साढ़े बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, थैंक यू। साडा प्रोग्राम तद सुनना जे इंटरटेनमेंट बंदे आ, जे टेंशन फ्री होना फिर प्रोग्राम सुनना। सिंह हरजीत शो सुन रहे 11 तो 12 पंजाबी विरसा एवरीडे। भाजी 18 साल हो गए यार।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
3: क्या कह रहे हैं आप
2: पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
2: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
5: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
6: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
5: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
6: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
7: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
6: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
7: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
6: 416-509-1509
7: और visit insuranceforyou.ca
8: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
8: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
10: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा
12: What's up everybody this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: The Glidden Road in number 17, Brampton. Telephone number is 647-302-1322.
1: मेरी बेटी दी क्लास विच तेती बच्चे हन। वो दसती है कि उत्थे किसी भी चीज दी पूरी सुविधा नहीं है। भरी हुई क्लास अते रौला परेशान कर देता है अते पूरी मदद भी नहीं मिलती है। यह इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 तो साढ़े सरकारी स्कूलों के बजट विचों $6 बिलियन कट दिते हैं। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।